0: कृपा कर नित जपै हरनाम तरावै।
1: श्लोक महला दूजा एहक नहीं आस के दूज लग जाए, नानक आसक करनिए सद हिरै समाए। चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए, नानक आसक नाखिए जिलेखे वते सोए महला दूजा।
0: सलाम जवाब दूवे करे मुंडो कुथा जाए, नानक दूवे कूड़िया थाए न कहीं पाए। पौड़ी जित से वे सुपाई है, सो साहिब सदा संभालिए जित की तपाई है अपना। साकाल बुरी क्यों कालिए मंदा मुन की चई, दे लम्मी नदर निहालिए जो साहिब ना लहारी है। एवे हा पासा टालिए किछला है, ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए।
2: पौड़ी जित से वे सुपाई है, सो साहिब सदा संभालिए जित कीता पाईए अपना। सा काल ब्रे क्यों काली है, मंदा मूल ना खिचे दिल मी नदर निहाली है। जो साहिब नाल ला हारिए ते वेहा पासा ढाली है, किछला है उपर काली है किछला है उपर काली है।

0: करे कनेरियां, खसम ना पाए साध। आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मान। नानक जिसनो लगा तिस मिले, लगा सो परवान महला दूजा।
1: जो जी होए सो गवै मोह का कहया वाओ, बीजै बिख मंगै अमृत वेखो, इउन्या महला दूजा। नाल आने दोस्ती कदे ना वैरास, जिहा जाने तिहो वरतै वेखो को निरजास। वस्तु अंदर वस समावै दूजी होवै पास, साहिब से ती हुक्म न चलै कही बने अरदास। कूड कमाणे कूड़ो होवै, नानक सिफत विकास महला दूजा।
0: नाल आने दोस्ती वडर सोने, पाणे अंदर लिख ज्यों, तिस दा थाहो ना थियो महला दूजा।
1: होए आना करी कम, आण न सकै।

0: दासन दास तुझे आगे बिनवता बिनवता बिनवता।
1: पौड़ी बढ़ियों बड़ा अपार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला।

ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितो जुक हिज्जै कोट इंद्र इंद्रान साह सहान गणिज्जै त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत तै सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत कच्चहु कंचन पयो शब्द गुरु श्रवण सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणियो लोह होयो लाल नदर सतगुर जद तारे पाहण मानक करे ज्ञान गुर कहयो बीचारे कठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पश परेत सुर नर पहे डिठे सबे था नहीं तुद जेहया बद्ध पुरख विदाते तो सोहिया वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर हरिहा नानक कसमल जाए नाया रामदास सार रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते संत रामदास सरोवर निका जो नावे सो कुल तरावे उदार हुआ है जी का जो नावे सो कुल तरावे उदार
कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसामदी नूर अरसोह कुरसोह चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरसादशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावेसा सज्जन सच्चा पातशाह सिरसादशाह जिस पास बैठिया

श्लोक संत उदरण दयालं आश्रम गोपाल कीर्तन निर्मलं संत संगेन ओट नानक परमेश्वरा

चरण कमल की ओट, उदरे सगल जन, सुन प्रताप गोविंद, निरपौ पै मन, तोट न आवै मूल, संचय

ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सबके जान ला सब किस तेरा बस तेरा कर पला तेरा कारण नंदुदाई तुद कर मान महत्ता तेज अपना आप जर।

मुख उजले कीती छुट्टी नाल जिने नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

पावड़ी वडी वडा पा तेरा मृत बारंग प्रंग ने कना जापू करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वस तेरा कर पलहा तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान मता तेरे अपना आप जर सर्व कला

तेरांतना पारावरिया। रागासा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जियां का दा तारा। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हारा। हरा पे ठाकुर हरा पे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक बेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जान जुग मह सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जमकी फासी। जे निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ है बो सिमृत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहि सो होई। तुद आपे सृष्ट सब ओ पाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मेंडा साई जो तो भावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जन सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछड़िया संजोगी मेला। जिसन तू जाना है सोई जन जाने हर गुण साधी आख बखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अबर न कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरडै पई ले निवासा पाणी पावक तिन्हें किया।
पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेत सा मूढ़ मना, हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिनकी सरना, जिंतु नाहीं विसरिया। आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख देहुरिया। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै न काम। मिल साध संगत भाज केवल नाम, सरंजाम लाग भवजल तरण कै। जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाउ। जप तप

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चौपाई हमरे करो हादा रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहा हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो आप हाद मोहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा निज करदै करिया सब बैरन को आज संघरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाद मुझे वरी है मरण काल का त्रास निवरी है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तोज जू करियो रक्षा राख ले हो मुहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षन उपजायो आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पाल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान जब उद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब या करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते वदन सृष्ट सब तारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरालम निरंका निर्विका निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ चारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव को कैत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुय तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केहे विद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव कही भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा सागरी श्रेष्ठ दिखाय चंपव आद जुगाद स्वरूप सजंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रण काता ये अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे
पुरख जावन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट न ऐ है। रक्षा होए तहें सब काला दुष्ट अरिष्ट ट्रें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक में हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंतरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना माने हो। सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कहें हम एक ना जाने हो। श्री असपान कृपा तुमरी कर

राम कली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सह सेती मन वजियां बाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया। शब्दो तां गावो हरी केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर ना रहो तू मन मेरे दुख सावे सारना। अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मन विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब किश है जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया। सदा कुरबान कीता गुरु विट हो जिस दी आए वडियाईया। कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै। कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित

चरण कमल की ओट, उदरे सागल जान, सुन परताप गोविंद, निरपाव पै मान, तोट न आवै मूल, संचया नाम तन, संत जना स्यो संग, पाइए बड़ा पुन, आठ पहर हर त्याए, हर जास नित सुन, संत जना स्यो संग, पाइए वड़ा पुन, आठ पहर हर त्याए,

गए मशक्कत कहा, नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त जूनी सह भंगुर प्रसाद असम हल्ला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महल्ले पहले के लिखे टुंडे असरा जाए की तुनी

0: सौ चंदा उग वह सूर चढ़े हजार एते चानन होंदया गुरबिन
1: नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तलवार जिवें संजे अंदर खेत खेते अंदर छुपया कहो नानक सो नहा फुलगे बपड़े ई तन विच सवा।

भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद सार लगाए प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफ्त विस्माद सालाह विस्माद उज्जड़ विस्माद राह।

सहजोग विवान लख सूरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवण जान नानक मति मिथ्या कर्म सचा निशान।

0: मेर शरीर काय कृति कृतवा हो जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझता है सतयुग रसन तो का धर्म गर्थवा हो त्रित रत जत का जोर गर्थवा हो द्वापर तप का सत गर्थवा कल जुग रथगन का कूड़ गर्थवा हो मोहल्ला पहला
1: साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सबको सत समावे कहे रहे भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाहे लेंगे प्राश जाए नाम को मुखंत्र पाए।

0: जिन वेद व्याकरण विचारे, ब्रह्मा गुण उचरे जिन कुम सब श्रेष्ठ सवारे, ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो, जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मानियो, ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो, जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मानियो।
1: गुण गावे नवनाथ तन गुर साज समायो, माता ता गुण रवे जेंच करवे कहायो, गुण गावे बलरा सपत पताल बसंतो, पार्थर गुण उच्चरे सदा गुर संग रहंतो, दूर बाबरू रंगरे गुर नानक जस गायो, कब कल सजस नानक गुर कट कट सहज समायो, कब कल सजस नानक गुर कट कट सहज समायो।
2: तीरथ करन शरण मन मोहन, जोहन पाप बेदारन को, हर तारन तरन समरथ सबे बेद, कुलह समूह उदारन सो, चित चेत अचेत जान सत संगत, परम अंधेर मोहो कत तो, मूरत करी चसा पल सिमरन, राम नाम संग रसना संग लो, हो सो काज अल्प सुख बंधन, कोट जन्म कहां दुख पाओ, सिख्या संत नाम भज नानक, राम रंग आत्म स्यों रो।
3: आद पुरख करतार करण कारण सब आपे, सर्व रहयो परपूर सगल काट रहे।

0: प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म।
1: नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सोह रंग।

राज कपटं रूप कपटं तान कपटं कोल गर्भत है संचंत बिखेया छलं छिद्रं

0: वा संतोख सूत जतगंढी सतवट एज नेऊ जी का हई ता पांडे कहत ना टुटे ना मन लगे ना जले ना जाए तन सुमान स्नान का जोगल चले पाए चौंकड़ मुड़न आया बह चौंके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थया ओम आओ चढ़ पया वी तगा गया महला पहला
1: लख चोरियां लख यारियां लख कुड़ियां लख गाल लख लगियां पहना मियां रात ने सिनाल तक पाहो कतिये बामन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सब को आखे पाए होए प्राणा छुट गए भीबर पाए हो नानक तग न टुटही जे तग होए जोर महला पहला
0: नाय मनिए पतु जैसाला ही सतसूत दर गए अंदर पाई है तग न टूट सपूत महला पहला।

हे नमानिया दे मान नतानिया दे तान नियोटिया दियोटा तान तान श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर सबद चौंकी आनंद साहिब।